वह जैसे तथ न जाई एवें सहजे सहजे विचार विचार के गुण गायो। वाहिगुरु जी दे गुणा नू गाया है। सहज अवस्था विच टिक के शांति भाव दे नाल जिन्हां ने वाहिगुरु जी दे गुणा नू गाया है, सहज सहजे ही सहज सुभावक ही सुते सिद्ध ही जिन्हां ने जपया है सतनाम श्री वाहिगुरु। लाडले लाड लडाउण वाले परमेश्वर जी, गाढ़े दयालु प्यारे परमेश्वर जी का जिन्हां ने नाम सहजे विचार विचार के जपया है। साध संगत जी, पहला भी कई बार बेनतियां कीतियां जांदियां, अक्सर संगतां दा सवाल हुंदा है, गुरमुख जन जग्यासु पुछदे ने जी मन नहीं टिकदा किवें टिकाया जावे। भाई उस दा मन टिकाउण दा जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राह दस्या रस्ता दस्या ना, वह सहज सहज है। सहज सहज गुण रमै कबीर। अमृत वेले उठ के हो सके ते सण के से इशनान करके, नहीं तो घट्टो घट इशनान तो जरूर करना, पिंडे इशनान तो पवित्रता वास्ते जरूरी कर लेना। सुचे आसन ते बैठ के नेत्र बंद करके बहुती चमक दमक बहुती कोई लाइट कमरे विच ना होवे, जे होवे ते फिर पिछले पासे गर्दन वाले पासे पिछों ते बड़ी मध्यम जी होवे, नेत्र बंद कर लेने ने। जो सतगुरु जी ने बचन किया ना, हर का नाम ध्याए सुन, वह जो ध्याना है उसनू सुनना है। पुरातन गुरसिखां दीआं इह जुगतियां होया करदियां सन, पहला मूल मंत्र का जप करना, फिर वाहिगुरु गुरमंत्र का जप करना, ते जदों पौ फटाला हो जाना फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावै, फिर दिन वेले गुरबाणी का नितनेम का पाठ जाप करना, सुंदर गुटके का, पंज ग्रंथी का, दस ग्रंथी का पाठ, इस तों वधीक किन्ने किन्ने पाठ जपजी साहब जी दे, कोई सौ सौ पाठ, डेढ़ डेढ़ सौ पाठ, ढाई सौ पाठ करन वाले गुरमुखां दे अज भी दर्शन हो जाते हैं। सो इस प्रकार साध संगत जी, फिर दिन वेले गुरबाणी का पाठ करना, जेड़े गुरमंत्र दे अभ्यासी ने, चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार, नाम नू जपदे रहना। पर जदों पहला अमृत वेले उठना है, इशनान करके चौंकड़ा मारना ते मूल मंत्र का पाठ करना है। सहजे सहजे जिवें सतगुरु जी ने बचन किया ना, सहज सहज गुण गायो, उत्थे फिर तेजी की लोड़ नहीं। जदों सहज अवस्था विच सहजे नाल टिक के जपना है, फिर इन्नी क आवाज़ दे नाल उचारना कि अपने कन्नां नू सुनाई देवे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप।

साध तोमर छान साध तोमर छान हर जन्म मरण विहीन हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप प्रवीण छिज तेज उदार तेज उदार बिज रूप दुरंत सब जग विवरु मधानंद जस प्रेरक भूत पवान दस चार चार प्रधान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग स्वरूप दार काल गरम पीता सब करम धरवीन कल धरम कपीन अनखंड अतुल प्रताप समर्थांड जय प्रताप जगत प्रसार ब्रह्मांड ब्रह्मांड सब के जग प्रसार सब जगत उतार जय कोट इंद्र कृपार जय प्रभु कृष्ण विचार जय राम कृष्ण रसूल जय प्रभु नर फूल नंद फूल गय सिंध बिंद नगेंद्र गय मेर शिखर जननेंद्र गय देव बाद मार गय देव सावकार गय सन अवतार गय इंद्र बार बुहार गय वीर दुर्वार जहार गय वीर शोर सरवार गय रात्र सनातन रूप गय रात्र सनातन रूप गय कुताब मनंत गय वीर कुताब मनंत गय वीर सिंध महान गय सात जीव सो पुराण गय जीव सो पुराण गय जगन होत कर रूप कई देश देश विरांत कई एक विरांत कहूँ वास बने करंत

नबकेड़ ताहे वंशगे बडैया देत ब गुलाब डाल वृग ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञान तिनो जान बखानी नाहे, असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे, नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बचैया ताहे बांधरी गजैया कहे, आदिश फिरैया ते तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग, आग के बछैया सोचा गोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत, चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब, कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीर चारी, लिखि केस नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटिरु को कन्हैया नाम, कंस को बथैया जमदूत कहियत है। मूड रूड पीट तन गूढ़ता को भेद पावे, पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल, वैरी साल सदा प्रतपाल, जम जाल ते रहत है। जोग जटा धारी सत्य सचे बटे ब्रह्मचारी, ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत है।

ताप के सहित जो पाई है तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो पायत जाप देव भूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत कर तरण की परत कर पताल के बस।

कोई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानवो एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो देहु राम सीत सोई बुझाओ निवाज उई मान सब एक बयाने को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकद फिरत के ते रूपवासी के ते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे जो आचार बोझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

योनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिनय कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा।

नगे हंस ने हंस ना थे ओ दंडे या मंडे प्रचंडे ब्रह्मा थे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सुभूते भविखे भवान चित्रे नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग अभेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न भरणं न व्याधं न रोगं न सुगं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध बिरधंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे

नेह ग्रहं गहु देह दुखं गहु औखदि रोग के सोख सोखं गहु देव विद्या गहु दैत बाने गहु जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सादगी तामसी हो कहु जोग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतं कहु भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहु वेद विद्या कहु व्योम वाणी कहु कोक की काव कथा कहानी कहु अद्र सारंग कहु भद्र रूपं कहु मद्र वाणी कहु क्षुद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव रूपं कहु चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहु परम पुराण को पार पावे कहु बैठ कुरान के गीत गावे कहु शुद्ध सेखं कहु ब्रह्म धर्मं कहु वृद्ध अवस्था कहु बाल कर्मं

जय जम बहु जुगण जू जुअंग भय कम बहु मेर भयाल भुवंग तपतापद सरब जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छ्यंगन काल अपाल दयाल सुवंग जेठ ठ्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जहर चंग सर्व मकीन मका जहराग न रूप न रेख रुखंग जय दाप न साप न सोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न बात न मात वितंग जय रचंग छत्री छत्र सिदंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दुख गणंग जय अंड हृदय ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचेव रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पदाव प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरो बिंद नगिंद नगंग श्रेय जच गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग ये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग जय तातन मातन भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादक पाद गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश बताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास तंग रज रोज एकादश चंद्र।

जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मणमाणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज मृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा।

भूत भूत है सत है समस्त सिद्ध वृद्ध दास जीव सर्व सत है अनाथ नाथ नाथ है अवंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है नराग रंग रूप है नरोग राग रेग है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेख शेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में।

न करम मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइए गंज आद देव है कहो सो कैसे पाइये जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है।

न सिंह है, न स्याल है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाव है, न छल है, न छिद्र है।

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छायो को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अवेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है।

है ख्याल है अखंड है, न रोग है न सोग है, न भेद है न भंड है, न अंग है न रंग है, न संग है न साध है, न प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीध है न सोच है, न ग्राम है, न

कोटिंद्र उपेंद्र व्यास अनंग सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भय मुखचार। आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सपै नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सपै कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाज पछर पार, सोत सोत थके महासुर पायु नहीं पार। त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन, सब प्रताप जगदीश को

कवन सृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चेतन की चेष्टा।

चूड़ बंके बपरब बंके भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखंड धमके अतिशि झमके फुंग फनंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैद जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन ध्वजा फरंगन फणी फुंकारण ज्योत जिते सरदार विपरखंड दुष्ट प्रखर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन भूमा का सलूर्ध दामनी प्रहासन सुचम निवासन सृष्ट प्रकार।

केसरी प्रवाहे सुध सन्ना है अगम था है एक वृते जय जय हो सीमा का सुर मर्दनाद कुमार का वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन वृष विनाशन।

संकटी निवारण तम उदाहरण तेज प्रकार खण धुंध तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाद अगाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जब जिवे जय जय हो श्री शास्त्र प्रकार खण आद अनिल अगाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा गुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हर लंगे आद तंगे क्रूर कथे जय जय हुजे रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत ने सुंभ मथे बारज बिलोजन वृदन विमोजन सोच विसोचन कौच

गंड का विराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुलत सुरंग को किल सुन लाजे किल विक भाजे सुखूब राजे मधुरंग दुर्जन दल दच्छे मंथन रिछे सब न फज्जे रूह रणंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोधन क्रूर विते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन सुधमते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़मते जय जय होशी मासुन मर्दन आद जुगाद अगाद गते खतरियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते वृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद भृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरि जय जय होशी मासुन मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्दन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण बितल तले अष्टायत बाहन बोलने वाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होशी मै खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवच्छण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदाहे अदल गाहे दुख हरे गंजन कुमाले गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंति जय जय होशे मैं खासुर मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ कही ली जोत जतीली तुंद मते अष्ट

रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिड़ाल वधे सरदार बिवर खंड दुर्जन धर खंड अतुल नमर खंड धरम धुजे धूमराज विधन सं श्रोणत चुन सं शोभन।

नंद तव कहो जथा बद रहन तंत। करता करी मकादर कृपाल अद्वै भूतान वह दयाल दाता तुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कह लखाए। अंछिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्वै ना सब रूप सूख ते रहत।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापते हैं। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सभोतन नेह विरक्त अगेह अच्छे है। जान को देत जान को देत जमीन को देत जमान को दह है। काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मापतल है। रोकंते और सोकंते जल जोकंते भव भांत बचावे। शत्रु अनेक चलाव दिखाव तउ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो करत है कर पाप समूहन भेट न पावे। और की बात कहा कहे तू सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्पान सब बजहारे। भेद न पाय सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग।

रंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चला दिल है रूह के रूह के लगा के देश के मंगे रूह के रूह के सिर मंगे रे बाबे बुंदे को मलत रंग के बुंदे बाबे बुंदे को मलत गुखा गुन कावे चिन्ह मचीन के गुखा गुन कावे चिन्ह मचीन के देश के चला तेरे बाबे तेरे

सेवक अधीन है कटैया जय मजार के। देवन के देव महादेव होंगे देवनाद भूम के हो जैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज होंगे साजा महाजोग होंगे जोग है धरैया द्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छत्रा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के। हंस निशि सिंह हरुम हीर सिंह हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसे पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद।

संबत सत्रह सहस भणि जय अर्ध सहस पुन तीन कही जय भाद्रो सुधि अष्टमी रविवारा तीर सतद्रो ग्रंथ सुधारा इत सरे चरित्र।

नाम है अर्चा पूजा अग्रवास भयकार जोगी सुन त्यावन जिते लिख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कर सतिया मन संतोख विजय देने के विचार दिन दे मंगे सहसा गुणा सुख करे संसार चोरा जा रहा तय कुड़िया रहा भाविका एक होंदा खाए चले